0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: मन शांत हो तो हर कठिन परिस्थिति भी एक नई और महत्वपूर्ण सीख बन जाती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू लिखते हैं,
0: सादर नमस्कार, ये मेरा प्रशंसा पत्र है। उमंग कार्यक्रम का मैं नियमित श्रोता हूँ, इससे हमारा भरपूर मनोरंजन तो होता ही है, हमें सीख और प्रेरणा भी मिलती है। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए पूरे टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद।
2: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
0: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी।
2: रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, कोकोवा या कोको फल का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
0: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से किस गांव से हुई थी।
2: तो श्रोताओं, इसका उत्तर है चिपको आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से राजस्थान के खेजडली गांव से हुई थी।
0: और फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसा क्यों?
2: उत्तर है साथियों, जापान की कोदामा परंपरा में विशेषकर पुराने पेड़ों को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि इन्हें जीवात्मा माना जाता है। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जो जंगल के दूसरे पेड़ पौधों का भी पोषण करते हैं।
0: और हमारा अगला सवाल बड़ा मजेदार था। हमारा सवाल था श्रोताओं, यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो जंगल का रक्षक लेशी उनके साथ क्या करता है?
2: उसका उत्तर है साथियों, लेशी उन्हें जंगल में भटका देता है।
0: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था आपसे कि खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है?
2: खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का संदेश है, जंगल हमारा नहीं है, हम बस इसके रखवाले हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: राष्ट्रगान जन गण मन को संगीतबद्ध किसने किया था?
0: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। हमारा निवेदन ये भी है कि इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को ताज़ा तरीन जानकारी के लिए जरूर फॉलो करें।
2: जी, और आपको बता दें कि अब NCERT की कक्षा 9 तक की नई पाठ्य पुस्तकें किसी भी सर्च इंजन द्वारा NCERT की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती हैं। टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF।
0: और यदि आप इन पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
2: जी,
0: वहाँ आप हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी जब चाहें सुन सकते हैं। और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
2: अंग्रेजी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित कविता को संगीत रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कार्यक्रम नगर की बनावट, साफ सफाई और कूड़ा निपटान समेत स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने का संदेश देता है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम का शीर्षक है जगमगाता गांव।
1: इस कार्यक्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग लिया गया है और विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि हमें अपने विचारों को कर्म में भी प्रकट करना चाहिए, अन्यथा उनका कोई मूल्य नहीं है।
2: साथियों, आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। ये घटना अमेरिका की है।
3: ये बात उन दिनों की है जब अमेरिका संयुक्त राज्य नहीं बना था। दरअसल ये कई देशों की कॉलोनी थी। उस जगह के मूल निवासी आदिवासी थे, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता था। आगे चलकर जब सभी राज्यों का एकीकरण हुआ तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका बना। ये वही अमेरिका है जिसे इतालवी नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोजा था और इसे नई दुनिया का नाम दिया था।
2: कोलंबस निकले तो थे भारत को खोजने, लेकिन पहुंच गए अमेरिका। तो आइए मित्रों, इस जानकारी के साथ अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये 17वीं शताब्दी के आरंभ का काल था। उन दिनों आज की तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं थी।
3: मोटर गाड़ी, टेलीफोन, चलचित्र, समाचार पत्र कुछ भी नहीं था। यातायात के साधन नहीं के बराबर थे और लोग आवागमन के लिए या तो पैदल चलते या पशुओं का इस्तेमाल करते थे।
2: बिजली भी नहीं थी, इसलिए रात को लोगों को यात्रा करने में बड़ी परेशानी होती थी। जो सड़कें थीं, वे भी खस्ता हाल थीं। बारिश के समय वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाया करते थे और उनकी मरम्मत करने वाले नहीं के बराबर थे। और तो और, अधिकांश सड़कें कच्ची ही थीं।
3: इन कारणों से वहां दुर्घटनाओं का

0: होना आम बात थी। रात के अंधकार में यात्रा करने वाले मुसाफिर और मुख्य रूप से व्यापारी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होते थे। हर रोज कोई न कोई ऐसी घटना होती ही रहती थी।
1: ज्यादातर व्यापारी ही इन दुर्घटनाओं का शिकार इसलिए होते थे क्योंकि उन्हें अपना सामान लेकर सुबह सुबह मंडियों में पहुंचना होता था और इसलिए उन्हें रात भर सफर करना पड़ता था।
0: अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में एक गांव था, नाम था पोप्स क्रीक। इसी गांव में एक बालक रहता था। उसके गांव में भी इस तरह की दुर्घटनाओं का होना आम बात थी। जब कोई भी उस गांव से रात को गुजरते हुए दुर्घटना का शिकार होता तो उस बालक को बहुत दुख होता।
1: लेकिन किया ही क्या जा सकता था, उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता था। उसने अपने गांव के बड़े लोगों से बात भी की लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। लोग उस बच्चे का मजाक भी उड़ाते थे। उसके पिताजी अक्सर अपने व्यवसाय के कारण बाहर ही रहते थे।
0: लेकिन वो बच्चा इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सोचता रहता। एक दिन की बात है, उसने अपनी माँ से कहा,
2: माँ।
3: हाँ बेटा।
2: मुझे बहुत बुरा लगता है जब रोज हमारे घर के सामने दुर्घटना होती है। कोई ना कोई रोज हमारे घर के सामने गड्ढों में गिरता है।
3: हाँ बेटा, पर ये कोई नई बात तो है नहीं।
2: हाँ पर
3: देखो, ऐसी दुर्घटनाएं तो पूरे गांव में हो रही हैं और दूसरे गांव में भी होती हैं।
2: पर माँ हमारे
3: लेकिन बेटा, इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? सड़कें खराब हैं और अंधकार भी तो है, तो दुर्घटनाएं तो होंगी ना बेटा।
2: जरा सोचो ना माँ, लोग इसी तरह दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं, क्या हम चुप्पी साधे बैठे रहेंगे?
3: अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: अरे लेकिन माँ सुनो ना।
3: अरे बेटा, मैंने कहा
2: ना। अरे सुनो, उफ माँ।
3: अरे बेटा, मेरे पास बहुत काम है, मुझे जाने दो।
2: माँ कोई सुनता भी तो नहीं है, मुझे इस समस्या के हल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या करूं?
0: साथियों, उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने पिता से भी बात की। उसने गांव के बड़ों से भी बात की लेकिन कोई हल नहीं निकला।
1: वो बच्चा लगातार सोचता रहता कि क्या किया जा सकता है, लेकिन कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। एक दिन की बात है, शाम हो गई थी और रात्रि भोजन का समय हो गया था। सब डिनर करने बैठे थे।
3: लो बेटा। अरे क्या बात है बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। बताओ बताओ, क्या सोच रहे हो?
2: हाँ माँ, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। बेशक बहुत बड़ा समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हम कुछ तो कर ही सकते हैं।
3: कुछ कर सकते हैं? भाई क्या समाधान है? देखो, बड़े बड़ों से कुछ नहीं हुआ और तुम करोगे।
2: हाँ माँ, माँ कैसा रहेगा यदि हम अपने घर के बाहर एक लैंप रख दें या लालटेन टांग दें?
3: बेटा जॉर्ज, तुम कैसी बातें करते हो? लालटेन टांग दें, इससे क्या होगा भला?
2: माँ मुझे दे दीजिए ना एक लालटेन।
3: बेटा
2: मैं जल्दी लालटेन को घर के बाहर लटका दूंगा।
3: अरे इस छोटी सी लालटेन से क्या होगा? क्या दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सारा गाँव इस बात पर हंसी उड़ाएगा हमारी।
2: हंसने दो ना माँ, हम लोगों को यूं ही चोट खाने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं मानता हूँ कि सारी दुर्घटनाएं नहीं रुकेंगी, लेकिन
3: लेकिन क्या बेटा?
2: कम से कम हमारे घर के सामने तो दुर्घटना होनी कम हो जाएगी ना। लालटेन से लोगों को रास्ता दिख जाएगा और वे बच जाएंगे। लाओ मुझे एक लालटेन दे दो माँ। दे दो ना माँ, दे दो।
3: अरे बेटा सुनो तो
2: माँ, एक लालटेन दे दो।
3: देखो बेटा, इससे कुछ नहीं होगा और तुम लालटेन उठाकर, अरे तुम,
2: अरे माँ लालटेन दे दो।
3: अरे लालटेन लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा रुको तो सही। ओहो सुनो तो, देखो ये बच्चा मानता ही नहीं है। ठीक है, जैसा तुम सोचो।
2: एक दो दिन के लिए ऐसा करने में हर्जी

0: है। करके देखता हूँ कहाँ रखूँ, कौन सी जगह। यही ठीक रहेगा, कुछ नहीं करने से कुछ करना तो अच्छा है।
1: साथियों, उस बालक का नाम था जॉर्ज। उसने जलती हुई लालटेन उठाई और घर के बाहर लटका दी। वो देखना चाहता था कि इसका क्या असर होता है। रात भर वो जागता रहा।
2: सुखद आश्चर्य, व्यापारियों और यात्रियों का झुंड वहां से गुजरता रहा, लेकिन उस रात उसके घर के आगे कोई दुर्घटना नहीं हुई।
1: सुबह वो बच्चा भागा भागा माँ के पास पहुँचा।
0: मामा, माँ।
3: अरे अरे, बड़ी खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
0: देखा आपने रात को लालटेन टांगने का असर? मैं तो सारी रात जागता रहा।
3: क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या वहाँ पे एक भी दुर्घटना नहीं हुई?
0: नहीं माँ, एक भी नहीं।
3: अच्छा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि हमारे घर के सामने किसी को चोट नहीं लगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा।
0: मैं कहता था ना माँ, कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है। अब तो मैं गांव के लोगों को भी ये बात बताऊंगा।
3: हाँ, ये जरूर करना, तुम सबको बताना।
0: हाँ माँ।
3: बहुत अच्छा काम किया बेटा, मैं तो विश्वास ही नहीं करती थी। बहुत अच्छा।
1: तो साथियों, जॉर्ज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसकी माँ को भी बात समझ में आने लगी थी। उन्हें लगा कि यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम हम अपने घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाओं को तो कम कर ही सकते हैं। कुछ लोगों ने उनकी हंसी जरूर उड़ाई, लेकिन उन्होंने अब रोज रात को लालटेन टांगना शुरू कर दिया।
2: उन्हें बहुत अच्छा लगा जब कई राहगीरों ने रात को उनके घर का दरवाजा खटखटाया और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
1: धीरे धीरे ये चर्चा सारे गांव में होने लगी और लगभग सभी लोगों ने अपने अपने घर के सामने लैंप या लालटेन रखना शुरू कर दिया और परिणाम ये हुआ कि दुर्घटनाएं होनी बिल्कुल बंद हो गईं।
2: राहगीर जब दूर से आते तो उन्हें उस गांव को जगमगाता देखकर बड़ी प्रसन्नता होती। अब तो दूर दूर तक इस गाँव की चर्चा होने लगी और लोगों ने इस गाँव का नाम रखा द विलेज ऑफ लाइट्स।
1: विलेज ऑफ लाइट्स यानी जगमगाता गांव। साथियों, देखा आपने कैसे एक बालक की सोच और इच्छा शक्ति ने सारी परिस्थिति बदल दी। धीरे धीरे आसपास के गांव के लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू किया और वो क्षेत्र दुर्घटना मुक्त हो गया। इसी बात से प्रेरणा लेकर बाद में सड़कों के किनारे तेल के लैंप पोस्ट लगने शुरू हो गए।
2: हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हम भी क्यों करें। कोई करे या ना करे, यदि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए, और वो भी पूरी लगन से, जैसा कि उस बालक ने किया।
1: साथियों, वो बालक जॉर्ज कोई और नहीं, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो आगे चलकर अमेरिका के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति बने।
2: जी हाँ साथियों, आप ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है या क्या कर सकता है, आप ये देखें कि आप क्या कर सकते हैं। यदि आप परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले वो परिवर्तन आप स्वयं बनिए।
4: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: और अब सुनते हैं कार्यक्रम
0: भाई मट्टू और घड़ी।
3: एक दिन का जिक्र है, भाई मट्टू खेलते खेलते बावर्ची खाने में घुस गए। वहां दीवार पर घड़ी लगी थी, बस देखते ही उछल पड़े, सीधे चट्टू के पास भागे। इतने तेज कि बस कुछ पूछो मत। चट्टू के पास पहुंचे तो सांस फूला हुआ था, मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। मट्टू बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल कर बोले,
4: अरे चट्टू, वो दीवार पर टंगी है बावर्ची खाने में, और भाई बहुत ही खूबसूरत है।
5: आखिर क्या चीज?
4: घड़ी। घड़ी और क्या, और इसमें कुछ लटक भी तो रहा है, जाने क्या है, इधर आता है उधर जाता है, बस हिलता रहता है और ऐसे बोलता है जैसे टिक टिक टिक टिक। सुनो सुनो, आ रही आवाज।
3: चट्टू भाई ने थोड़ी देर आवाज की तरफ कान लगाए और बोले,
5: हाँ भैया, आ तो रही है।
3: इतना कहकर वो भी बावर्ची खाने की तरफ बहुत तेजी से भागे कि जरा एक नजर देख लें। वहां पहुंचकर बोले,
5: अरे भैया, ये तो पेंडुलम है। पेंडुलम, वही जिसे मास्टर साहब उस दिन रक्कास कह रहे थे। आहा भाई, ये तो बड़ा अच्छा झूला है।
3: चट्टू भाई झट से उस पर कूद कर चढ़ गए। अब मट्टू भाई को कहां ताप थी, उन्होंने भी एक छलांग लगाई और झूले पर सवार हो गए। चट्टू भाई बोले,
5: भैया टिल्लू, खिल्लू और जग्गू मग्गू को भी बुला लाएं।
3: मट्टू बोले,
4: हाँ हाँ जरूर।
3: दोनों उतरे और थोड़ी देर में अपने साथ फौज की फौज ले आए।
4: देखो, ये है वो झूला, मगर अब सूरत क्या हो। अच्छा, यूं करें कि दो दो करके बारी बारी झूलें। पहले हम झूलेंगे, हमारा हक पहला है, हमी ने तो इसका पता लगाया है।
3: मगर वो चारों पांचों अकड़ने लगे।
5: वाह साहब वाह, पहले हम झूलेंगे, तुम अपनी

0: बारी ले चुके और जाने कितना झूल चुके हो। अभी ये बहस हो रही थी कि घड़ी की सुई ठीक 12 के हिंसे पर आ गई। अचानक एक खटके के साथ छोटा दरवाजा खुला, उसमें से एक खूबसूरत सी चिड़िया बाहर आई और बहुत गुस्से से बोली,
1: हाय, ये क्या शरारत, तुमने यहाँ आने की कैसे हिम्मत की, ये मेरा घर है, भाग जाओ।
0: चूहे इस आवाज से ऐसे सहमे कि जिसका जिधर मुंह उठा गिरता पड़ता बुरी तरह भागा।
2: पढ़िए और समझिए।
0: कान लगाना,
2: ध्यान देना।
0: रक्कास,
2: नाचने वाला।
0: ताब,
2: ताकत, बर्दाश्त।
0: हिंसा,
2: नंबर, अदद। इन सवालों के जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1,
0: भाई मट्टू खेलते खेलते कहां पहुंचे?
2: सवाल नंबर 2,
0: घड़ी की आवाज कैसी थी?
2: सवाल नंबर 3,
0: घड़ी के किस हिस्से को मट्टू ने झूला बनाया था?
2: सवाल नंबर 4,
0: चट्टू, टिल्लू, खिल्लू और मट्टू डर कर क्यों भागे?
3: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: श्रोता सकले, ইমান পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত অনুষ্ঠান উমং শুনিলে।

सबसे पहले तो परागमाला के सभी श्रोताओं को जयश्री का प्यार भरा नमस्कार। नया दिन कुछ गीत और कुछ बातें लिए फिर से हाजिर हूँ मैं। श्रोताओ, कभी कभी लोग अपने किस्मत के चलते कामयाबी के राह तक तो पहुंच जाते हैं, परंतु कामयाब तब ही हो पाते हैं जब उनकी मेहनत रंग लाती है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे अदाकारा के बारे में जिनको नाम और काम तो विरासत में ही मिली थी, पर नाम को रोशन किया खुद के मेहनत और लगन से। मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड की अदाकारा, स्टाइलिश टैलेंट से भरपूर अभिनेत्री करीना कपूर के बारे में।

करीना कपूर का जन्म 21 सितंबर 1980 को मुंबई के उस परिवार में हुआ जिनका हिंदी फिल्म जगत में पीढ़ियों से महत्वपूर्ण योगदान है, जो सबसे प्रसिद्ध और पुराना परिवार है। पृथ्वीराज कपूर से लेकर करिश्मा, करीना तक इन कपूर परिवार के सदस्यों ने बॉलीवुड को अपने अभिनय से प्रभावित किया। लेकिन श्रोताओं, इस फिल्मी परिवार से होने के बावजूद करीना को फिल्मों में आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि पहले कपूर खानदान के लड़कियों को फिल्मों में काम करना मना था। परंतु करीना की बड़ी बहन करिश्मा ने ये रिवाज तोड़कर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिर उसी राह पर चलकर करीना ने भी बॉलीवुड में अपनी कदम रखी और बन गई बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्रियों में से एक।

मशहूर एक्टर पृथ्वीराज कपूर के खानदानी परंपरा को आगे चलकर बरकरार रखा करीना ने। बचपन से ही अपने परिवार में फिल्मों को लेकर जो सनक देखा करीना ने, उसी के चलते मन में चाह भी पनपी फिल्मों में आने के लिए, क्योंकि उनकी परदादा राज कपूर, चाचा ऋषि कपूर, पिता रणधीर कपूर, माँ बबीता, सभी अपने गहरा छाप छोड़ चुके हैं बॉलीवुड में। परिवार के रिवाज के चलते पहले तो कई सारे संघर्ष, फिर माँ के समर्थन से अभिनय को ही अपना करियर बनाया करीना ने। फिल्मों में अपनी कदम रखने से पहले करीना ने KNK यानी किशोर नमित कुमार एक्टिंग स्कूल से अभिनय का प्रशिक्षण लिया।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं परागमाला कार्यक्रम आकाशवाणी गुवाहाटी के महाबाहु से। आप हमारा यह प्रसारण सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर के बारे में और सुन रहे हैं करीना कपूर अभिनीत चंद फिल्मों के गीत। करीना कपूर खुद बॉलीवुड की प्रसिद्ध कपूर खानदान से ताल्लुक रखती है, साथ ही उनका विवाह भी हुआ प्रसिद्ध पतौदी परिवार में ही। करीना कपूर के ससुर जी मंसूर अली खान पतौदी दिग्गज क्रिकेटर थे, जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे, और सास शर्मिला टैगोर बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री। करीना कपूर की शादी सन 2012 को मशहूर एक्टर सैफ अली खान से हुआ और दोनों को दो बेहद ही खूबसूरत बेटे नसीब हुए, तैमूर और जहांगीर।

करीना ने अपने फिल्मी करियर में कई सारे फिल्मों में अभिनय किया, उनमें से काफ़ी सारे तो बॉक्स ऑफिस में अपना जलवा नहीं दिखा पाया, लेकिन करीना ने अपने अभिनय से दर्शकों के मन में अपना जगह बना लिया। करीना अभिनीत चंद फिल्मों के नाम है रिफ्यूजी, जो करीना की डेब्यू फिल्म थी, फिर मुझसे कुछ कहना है, यादें, अशोका, कभी खुशी कभी गम, मुझसे दोस्ती करोगे, जीना सिर्फ मेरे लिए, चमेली, तलाश, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, युवा, क्योंकि छुप छुप के, जब वी मेट, थ्री इडियट्स आदि। अपने फिल्मों के साथ साथ अपने निजी विवादों, बेपरवाह अंदाजों के लिए सुर्खियां बतौरने वाली करीना फिर भी सबकी चहेती बेबो है। आज आपके जन्मदिन पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्रोताओ, अभी वक्त का है इशारा लेनी होगी जॉयश्री को आपसे विदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए परागमाला। चलते चलते ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

0: क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे ब्रह्म कुमारीज के विश्व नवीनीकरण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान का शुभारंभ और वडोदरा में ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने लोगों से खुद दवाएं न लेने और डॉक्टरों की सलाह लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अचानक किसी दवा का दुष्प्रभाव होने पर उसे नजरअंदाज न करें। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब के भटिंडा जिले के तलवंडी साबो से नशा मुक्त पंजाब यात्रा के 4थे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत ने कनाडा में उड़ान प्रशिक्षण के दौरान एक हादसे में तमिलनाडु और पुदुचेरी के 2 विद्यार्थियों मनोज शिवकुमार और श्रीसरण तिरुगुनानासंबंधम की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो शोक संतप्त परिवार के साथ है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो पार्थिव शरीर को परिवारों तक पहुंचाने के लिए सभी सहायता देने को तैयार है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज लक्ष्मण राव इनामदार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि लक्ष्मण राव इनामदार ने राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और सहयोग के माध्यम से समाज को सशक्त बनाया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने 252.4 अंक के साथ रजत और रुद्रांश पाटिल ने 230.9 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल ने 2रा स्थान प्राप्त किया जबकि चीन ने स्वर्ण पदक जीता। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुंटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া 1 বজাত হিন্দীত আৰু 1:05ত ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। नई दिल्ली में नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी के लिए फिलहाल 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और सरकार का उद्देश्य इनकी संख्या प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के स्तर तक ले जाने का है। सुश्री पटेल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये जानकारी देने की सूची में भारत 8वें स्थान पर पहुंच गया है।
2: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
3: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
2: व्हिच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नवीन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह पहला दौरा है। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की

समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नवीन ने सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने के निर्देश के खिलाफ दायर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने प्राधिकरण को आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया था, जबकि ये जिम्मेदारी स्थानीय निकायों और प्रशासन की है। सॉलिसिटर जनरल ने प्राधिकरण की याचिका पर सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की विशेष पीठ के पुनर्गठन का भी अनुरोध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय में आज 7 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने न्यायमूर्ति निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज को पद की शपथ दिलाई। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल तक के जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से लैस स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबह खाड़ी पहुंचे। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालनगत तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक सेमीफाइनल में सिंगापुर की हुई हुनटो से 0-2 से हारने के बाद सुचिका तारियाल ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: its citizens against traveling to Iran amid possibility of further escalation in the conflict. Shipping through the Strait of Hormuz continues to remain slow, but fall in oil prices today reflect hopes for some diplomatic solution. Manish Shiva for Akashvani News from Dubai.
1: Russia's ruling United Russia party has taken the lead in the country's parliamentary election, according to preliminary results released by the Central Election Commission. The party secured about 57.5% of the vote, while overall turnout stood at 56.66%. Final results are expected by September the 25th. The United Russia party won 324 seats in the previous election. The election took place amid the ongoing conflict with Ukraine and a major overnight drone attack launched by Kiev. Russian officials said more than 1,900 drones were involved, killing at least two people and damaging an oil refinery. In the Asian Games, India secured a double podium finish in the men's 10-meter air rifle event in Nagoya, Japan. Himanshu Dhillon won the silver medal with a score of 252.4, while Rudraksh Patil clinched the bronze with 230.9. Earlier, India had also won the silver medal in the men's 10-meter air rifle team events. In mixed martial arts, Suchikata Riyal bagged the bronze medal after losing 0-2 to Singapore's Hui Hoon Choi in the women's 60-kilogram traditional semi-final. The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, and Telangana for today. According to IMD, similar weather conditions are also likely to prevail over coastal Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka and Madhya Maharashtra during the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India-New Zealand Free Trade Agreement finalized comes into force on 20th October, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Union Minister Anupriya Patel says Indian pharmacopoeia gains recognition in 25 countries, reflecting the country's remarkable journey of self-reliance. Releases 7th edition of National Formulary in New Delhi. BJP says Congress is deeply influenced by communist ideology, condemns former Vice President Hamid Ansari's remarks. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to lead Indian delegation at 81st session of UNGA in New York. Russia's ruling United Russia party takes lead in parliamentary election. IMD forecasts heavy rainfall over Andaman and Nicobar, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana for today. And Indian shooters win 3 medals in men's 10-meter air rifle, taking total tally to 6 at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बनाई, करीब 58% वोट हासिल किए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड को होने वाले 100% भारतीय निर्यात पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा।
3: This strategic partnership.
4: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता

0: लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: इस समझौते से वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद सहित भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, विद्यार्थी और युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर पैदा करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं, जो मजबूत जन संबंधों और व्यापार तथा निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में नेशनल फार्मुलरी ऑफ इंडिया के 7वें संस्करण को जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए फिलहाल 1100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
2: Today we have around 1150.
3: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
2: Which will make a big change in times to come.
1: सुश्री पटेल ने बताया कि भारत अब दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी से जुड़े आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगी सुरक्षा डेटाबेस को दे रहा है।
2: इंडिया टुडे हैज रिजन फ्रॉम द
3: भारत आज WHO के डेटाबेस में दवा सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करने में दुनिया में 8वें स्थान पर है, जबकि 2009 से 2014 के बीच वे 123वें स्थान पर था। दुनिया के करीब 25 देश भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देते हैं और स्वीकार करते हैं।
2: व्हिच रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट द इंडियन फार्माकोपिया।
1: सुश्री पटेल ने लोगों से बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा न लेने की अपील की है। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, दूरसंचार पहचानकर्ताओं के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सतर्क रहने को कहा है।
3: विभाग ने दोहराया है कि ऐसा किया जाना एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 3 साल के तक की जेल और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने को कहा है। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदें। संचार मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेमासानी ने कल तमिलनाडु के मदुरई में डाक विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में इंडिया पोस्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स साझेदारी का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
4: इस पहल के तहत शुरुआत में 3 किसान उत्पादक संगठनों तेनिकी वराठ नाठी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, मदुरई की मामा मदुरई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और विरुद्ध नगर जिले की कम्बिकुड़ी कलवाई फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के साथ साझेदारी की गई। मदुरई प्रधान डाकघर में विक्रेताओं के ऑर्डर के संग्रह, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भेजने के लिए विशेष भंडारण और ऑर्डर पूर्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। श्री पेमा सानी ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना के तहत एस किला पट्टी गांव को संपूर्ण सुकन्या ग्राम घोषित किया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे कल एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी।
5: सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष ये पुरस्कार फीचर फिल्मों, नॉन फीचर फिल्मों और सिनेमा पर लेखन के क्षेत्र में रचनात्मक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। 72वें संस्करण के पुरस्कार विजेताओं की घोषणा 18 जुलाई 2026 को 3 जूरी के अध्यक्षों ने की थी। इन पुरस्कारों को 3 मुख्य श्रेणियों, फीचर फिल्में, नॉन फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में बांटा गया है। साथ ही इसमें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी शामिल है। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजी राव

0: विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तर प्रदेश के दो दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नबीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। श्री नबीन ने युवा संवाद में छात्र छात्राओं से बातचीत की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। फटिंडा के तलवंडी साबो में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थों और ड्रग माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में ड्रग माफिया को खत्म कर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए नई शुरुआत करेगी।
1: पंजाब की नशा मुक्ति के लिए अभियान चला रही है। हम सरकार पे भी दबाव बना रहे हैं। जितने माफिया है उनके खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। दो दिन की बहारें हैं जग में, कब जुल्म किसी का चलता है। ये जुल्म का सूरज लाख चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। आज मैं चुनौती देने आया हूँ, प्रधानमंत्री जी का भी संदेश और अमित जी का भी संदेश लेके आया हूँ।
0: श्री चौहान ने नशे से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की हाल की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी मुख्यालय में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अंसारी ने 2019 में प्रकाशित एक किताब का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद को कम्युनिज्म से बड़ा खतरा मानते थे। श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथ और वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर हम विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम की नगरी अयोध्या आज वैश्विक पटल पर धार्मिक पर्यटन और विकास की नई इबारत लिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों से अयोध्या में अनेकों विकास कार्य हुए हैं और पूरी दुनिया में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में अयोध्या फिर से प्रतिस्थापित हो चुकी है।
2: 2014 में केंद्र में सरकार बदलने और 2017 में राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से ही भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही वैश्विक मंच पर अयोध्या नगरी धार्मिक पर्यटन और सनातन धर्म की प्रतिष्ठा और विकास कार्यों का पर्याय बनने लगी। इसी राम की नगरी पर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि अगर देश को 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जागृत करना होगा।
3: राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा।
2: अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप यहां सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है।
4: अयोध्या में जब से राम मंदिर बना है अयोध्या में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सामान्य रेहड़ी पटरी के दुकानदारों की भी आय 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई।
2: पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही राम नगरी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हुई है। अयोध्या आज न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि धार्मिक पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार के मामले में नए आयाम स्थापित करके भारत की सांस्कृतिक पहचान और विरासत का वैश्विक प्रतीक बन रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का विषय है विश्वास बहाल करना, बदलाव का प्रबंधन करना। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने देशों की प्राथमिक

0: नेताओं और रुख को सामने रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेज ने विश्व नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए और बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की उम्मीद है। यूनाइटेड रशिया पार्टी ने पिछले चुनावों में 324 सीटें जीती थी। ये चुनाव यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष के बीच हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो

0: हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। वहीं संघर्ष में कूटनीतिक सुलह की संभावना के संकेत भी मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेकाल और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन तक तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले हिमांशु ढिल्लो, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल की टीम ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। वहीं सुचिका तारियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में महिलाओं के 60 किलोग्राम पारंपरिक स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई ईपीएफओ वेतन सीमा पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी, मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेकाल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 3 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু এতিয়া আগবঢ়াবলৈ লোৱা হৈছে পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান।

आइए श्रोताओं, अब समय है फिर आपके भेजे हुए संदेश देखने का। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है उस्मान खत्री, रिजवान खत्री और अब्दुल गफार खत्री का। ये लिख रहे हैं हमें कोहिनूर रेडियो श्रोता संघ के साथ और खरगोन मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं। पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य लाड़ो कोयल, पापा जी नायक चंद मल्होत्रा और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगु भाविक सिक्का भी हमें सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। महेंद्र पार्क से हमारे साथ हैं कैलाश, दिनेश, कौरांश, रुक्मणी और इन्होंने भी अपना गीत लिख भेजा है। खानपुर दिल्ली से राम पुकार जरीवाला और सोनू जरीवाला हमारे साथ हैं। किशन सपकाल, आशा और विशाल हमें सुन रहे हैं शास्त्री नगर से। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मन भावन कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं तुरंत संगीत की इसी प्यारी रवानी के साथ।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
4: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
3: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
5: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
6: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
5: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
6: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
5: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
6: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
7: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं कार्यक्रम मन भावन में, आप सभी के मन पसंद गीतों और हार्दिक संदेशों के साथ। तो श्रोताओं, अभी भी नहीं लिख के भेजा है तो जल्द ही हमें लिख भेजिए अपना मनपसंद गीत, अपना संदेश, अपना नाम और शहर, और भेज दीजिए हमें ईमेल माध्यम से fmgoldairdelhi@gmail.com पर। और अगर आप हमें व्हाट्सएप संदेश भेजना चाहते हैं तो 9868868753, यानी 9868868753 पर संदेश भेज सकते हैं। तो आइए श्रोताओं, अविलंब उन सुरों की ओर बढ़ें जो आपके भेजे खतों से हम टटोल कर लाए हैं। अगला गीत हम सुना रहे हैं आपको भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा जी की फरमाइश पर। आइए सुनें।

आइए श्रोताओं, अब फिर पढ़ते हैं आपके संदेश और देखते हैं किसने लिखा है, कहां से और कौन सा गीत भेजा है। जनकपुरी सहारनपुर दिल्ली से जॉन डिकास्ट्रो, रोजी, पर्ल और विलिस ने

संदेश भेजा है। निशीत परगीर जुड़े हैं हमारे साथ बरवानी मध्य प्रदेश से, गांव फारसी हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। ओल्ड लिसनर्स ग्रुप रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, कुलदीप सिंह होरा और भारत भूषण श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नाटका के महालिंगपुर से हमारे साथ हैं आइनुद्दीन बनहट्टी, मुमताज, रियाज, रुबीना, जुनैद, अंजुम, मारिया, हुमेरा, सलमान और शीमा। और अब सुनते हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर जी की फरमाइश पर ये गीत।

आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम समाप्त हो इससे पहले आपके कुछ और संदेश भी पढ़ लें। सलीम अख्तर रेशमा बेगम हमें लिख रहे हैं अलीगढ़ से, भवरपुर बसना से चंपा देवांगन राधेश्याम जी और गोविंद जी इनके साथ हैं। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, इनके साथ हैं श्वेता, किशु, अर्णव और सत्यमानंद। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी जी इनके साथ हैं। गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा, साइमा, सरफराज, गुल फराज और बेबी मुस्कान। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है दिलीप डाबरिया और शानू जी, ये सुन रहे हैं हमें मादीपुर कॉलोनी दिल्ली से। भगवती सुन रहे हैं हमें नई दिल्ली से। और अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा जी का। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा सुन रहे हैं हमें छत्तीसगढ़ पलारी से। दिलीप, महेश, शेखर और रीना देवी, नेहा कुमारी, सरोज, स्वप्ना, सरजाल, अमन, आयुष, ये सब हमें सुन रहे हैं। कहाँ से सुन रहे हैं? अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इनकी फरमाइश पे एक और गीत, पर उससे पहले आज का संगीत सफर आपकी पसंद, आपकी फरमाइशों और आपकी बातों के साथ ही पूरा हुआ। आपका हर संदेश हमारे लिए इस कार्यक्रम का एक अपना सा हिस्सा है। यदि समय के अभाव में आज आपकी फरमाइश या आपका संदेश कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो सका हो तो कृपया इसे हमारी अनदेखी ना समझिएगा। आपकी पसंद हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित है और अवसर मिलते ही वो फिर हमारे संगीत का हिस्सा बनेगी। तो अपनी पसंद यूं ही हम तक भेजते रहिए। मिलते हैं समाचार के पश्चात। जुड़े रहिए आकाशवाणी एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ। प्रियांशी भटनागर का आपको तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को दशहरा के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत करेगा।
1: This strategic partnership.
2: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
0: इस समझौते से सेवाओं, निवेश, पेशेवरों, विद्यार्थी तथा युवाओं के आवागमन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध हैं। ये संबंध व्यापार और निवेश, कृषि, शिक्षा, खेल, प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
3: Today we have around 1150.
4: देश में अभी करीब 1150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं के रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
3: Which will make a big change in times to come.
0: दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आज मेरठ पहुंचे। श्री नवीन आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मेरठ और सहारनपुर यात्रा पर हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद श्री नवीन पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्यों को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। बठिंडा के तलवंडी में यात्रा के 4थे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थ माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ. जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होंगे। रूस में सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया

पार्टी ने संसदीय चुनाव में बढ़त बना ली है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार पार्टी ने करीब 58% वोट हासिल किए हैं। अंतिम परिणाम 25 सितंबर तक आने की संभावना है। आधुनिक युद्धक क्षमताओं से सुसज्जित स्वदेशी जहाज INS सह्याद्री और INS कुलिश फिलीपींस की सुबिक खाड़ी पहुंच गए हैं। दोनों जहाजों को नौसेना की संचालन तैनाती के अंतर्गत भेजा गया है। ये युद्धपोत फिलीपींस में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और संयुक्त सहयोग गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 2 पदक जीते। हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं प्रियांशी आपके साथ जुड़ी हूं और सुरों के सिलसिले को जारी रखते हैं। आइए सुने ये गीत कश्मीर की कली फिल्म से, मोहम्मद रफी और आशा भोसले के सुरों में सजा, ओपी नैयर का संगीत और एसएच बिहारी के बोल थे।

आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं एक और कर्णप्रिय गीत। आरजू फिल्म से लता मंगेशकर के सुर हैं, शंकर जयकिशन ने संगीत दिया और हसरत जयपुरी द्वारा लिखा है ये गीत।

श्रोताओं, अब से कुछ ही समय में सुनिएगा रोजगार समाचार और फिर 5:10 पर मैं मिलूंगी फिर आपसे कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में। तब तक के लिए नमस्कार।

0: is below 40 years, with excellent English communication and computer skills. The consolidated remuneration is 60,000 rupees per month, with hostel accommodation available subject to availability at 5,000 rupees per month. Selection will be through a written test and an interview. Last date for applications is 1st October 2026. For details and application performer, kindly visit www.nicf.gov.in. Security Paper Mill, Narmadapuram, a unit of Security Printing and Minting Corporation of India Limited, invites applications for one medical officer and one post of a consultant, civil, on contract basis. The medical officer post requires MBBS with MD or MS from a recognized institution, while the consultant civil requires a degree in civil engineering from a recognized university or institution. The maximum age limit is 62 years. Applications should reach the organization by 12th October 2026. For detailed eligibility, experience and application procedure, kindly visit the website at www.spmnarmadapuram.spmcil.com. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है, जो गेट 2027 के माध्यम से कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में करियर के अवसर उपलब्ध करा रहा है। आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं कार्यकारी प्रशिक्षु केमिकल, कार्यकारी प्रशिक्षु इलेक्ट्रिकल, कार्यकारी प्रशिक्षु इंस्ट्रूमेंटेशन तथा कार्यकारी प्रशिक्षु मैकेनिकल के लिए। योग्यता की शर्तें, अन्य नियम और शर्तें तथा निर्देश देखने के लिए विस्तृत विज्ञापन को देखिए गेल की वेबसाइट पर। वेबसाइट है gailonline.com, gailonline.com। वेबसाइट पर जाकर करियर सेक्शन के अंतर्गत विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। डीएनएस क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान शास्त्री नगर पटना बिहार आमंत्रित कर रहा है संविदा के आधार पर व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन। पदों की संख्या और विभाग इस प्रकार से हैं: कृषि अर्थशास्त्र एक पद, एमबीए ऑपरेशन सप्लाई चेन एवं लॉजिस्टिक्स एक पद, एमबीए कृषि व्यवसाय दो पद तथा वित्त एवं लेखांकन एक पद। इन पदों पर नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, जिसे अभ्यर्थी के संतोषजनक कार्य निष्पादन या संस्थान की आवश्यकता के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र, सभी संबंधित प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रतियों सहित संस्थान के पते पर पंजीकृत डाक से भेजें। योग्यता, मानदेय तथा नियुक्ति के अन्य नियमों और शर्तों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी संस्थान की इस वेबसाइट पर www.dnsricmpatna.org। भारी उद्योग मंत्रालय इस विवरण के अनुसार संविदात्मक आधार पर सलाहकार ग्रेड 1 के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पदों की संख्या एक है। समेकित पारिश्रमिक 1,00,000 रुपए प्रति माह रहेगा। संलग्नता की अवधि रहेगी 2 साल, जिसे 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। आवश्यक योग्यताओं में शामिल हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वाणिज्य में CA, ICWA, CS, MBA अथवा वाणिज्य में मास्टर्स डिग्री। संलग्नता की विस्तृत शर्तों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट है heavyindustries.gov.in। भारतीय स्टेट बैंक नियमित आधार पर विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारियों के इन पदों पर नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। व्यापार वित्त अधिकारी कुल पद हैं 14, व्यापार वित्त अधिकारी IBG

के लिए कुल पद हैं 21। आवेदन कैसे करें? ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिशा निर्देश, शुल्क के भुगतान के लिए निर्देश, दस्तावेज कैसे अपलोड करें, चयन प्रक्रिया, सामान्य जानकारी आदि के लिए विवरण संबंधित विज्ञापनों में दिए गए हैं जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट है sbi.bank.in/web/careers/current-openings। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया कॉन्टेक्ट अस या पोस्ट योर क्वेरी के लिंक के माध्यम से लिखें जो बैंक की वेबसाइट पर

0: careers/current openings. किसी भी प्रश्न के लिए कृपया कॉन्टेक्ट अस या पोस्ट योर क्वेरी के लिंक के माध्यम से लिखें, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है. वेबसाइट है sbi.bank.in/web/careers. आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं. आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही. कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा.
3: नमस्कार. कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास. जानेंगे कि आज क्या है उनके पास खास रिपोर्ट्स. खेल के मैदान की गतिविधियों और आर्थिक जगत की सुर्खियों पर भी एक नजर डालेंगे. और इसके अलावा कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि और आज ही के दिन जिनका हुआ था जन्म. परिक्रमा के आज के इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ हैं मेरी दोस्त होस्ट सायरा मुस्तफा.
4: यस, दोस्त होस्ट को होस्ट एंड ऑफ कोर्स नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स टू दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा. एंड ऑफ कोर्स हस्बी दस्तूर लाते हैं हम आपके लिए ताजा तरीन खबरें. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स इज द नेम ऑफ द शो इज परिक्रमा. सो वील डू द परिक्रमा ऑफ द कंट्री. दैट इज वील गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड सी वॉट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव. बिकॉज दिव्या लॉट ऑफ स्टोरीज दैट प्रॉब्ली डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द न्यूज बुलेटिन. जो हार्ड न्यूज नहीं होती बट बहुत ज्यादा वैल्यू रखती हैं. सो दैट इज व्हाई वी ब्रिंग देम टू यू इन आवर शो परिक्रमा. एंड विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विद द शो दिव्या.
3: बिल्कुल.
4: लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस. इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फाइनलाइज्ड कम्स इनटू फोर्स ऑन 20th October, सेज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल.
3: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा बाजार में आने वाली या इस्तेमाल होने वाली दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी मूल्यांकन और रोकथाम में भारत की यात्रा आत्मनिर्भरता का उल्लेखनीय उदाहरण.
4: बीजेपी सेज कांग्रेस इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कंडेम्स फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारीज रिमार्क्स.
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे.
4: रशियाज रूलिंग यूनाइटेड रशिया पार्टी टेक्स लीड इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन.
3: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकल और तेलंगाना में आज तेज बारिश की संभावना.
4: And Indian shooters win 3 medals in men's 10-meter air rifle, taking total tally to 6 at Asian Games in Japan. And yes, as always, we start our show with our segment, Dateline India, in which we take a look at some important developments or look at some important days. And today, apart from talking about the International Day of Peace, we'll also have another interesting topic, jiski baad mein hum charcha karenge. But first, let's talk about International Day of Peace.
3: बिल्कुल सायरा, जब हम पीस की बात करते हैं तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की नींव है एक तरीके से. और हम हमारे यहाँ जो वेद हैं उनमें ये पहले से ही लिखा गया है. ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्. ओम शांति शांति शांति. तो जो दुनिया आज शांति की बात कर रही है, हमने बहुत वर्षों पहले उस शांति के साथ में हम जिए हैं और भारत को सबसे ज्यादा पीसफुल कंट्री कहा भी जाता है. इसका मतलब हुआ जो हमने आपके सामने पढ़ा उसका था कि सब सुखी हों, सब निरोग हों, सभी का जीवन मंगलमय हो और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े. इसमें किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति या धर्म या जाति की बात नहीं की जा रही बल्कि सब की बात की जा रही, यानी कि ह्यूमैनिटी की बात की जा रही है. तो हजारों वर्ष पहले भारत की धरती से निकली ये प्रार्थना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की पहले थी. और शायद पहले से कहीं और ज्यादा है आज के समय में।

0: क्योंकि आज जब दुनिया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मना रही है तब हमारे सामने युद्धों और संघर्षों की एक ऐसी तस्वीर है जिन्हें देख करके कई बार सायरा मन ठहर सा जाता है, सिहर सा उठता है। जब हम देखते हैं इतनी जगहों पर जो युद्ध चल रहे हैं और जिसमें मनुष्य किस तरीके से करा रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मतलब किस स्थिति में हम पहुंच गए हैं, तो ऐसे में शांति की बात करना बेहद जरूरी हो जाता है।
1: That's right. And in fact, it is rightly said that those who hold no weapons, they often pay the highest price for violence because people who are actually getting affected by the violence that is happening, they were not the ones, you know, the common people never held up guns against each other. So, well, peace is probably just one word, but what a vast word it contains. And what better way, Divya, to begin the International Day of Peace than with these timeless words.

0: Indeed, I'm sure that, you know, those were very self-explanatory words, and that also tells us that in our culture, in our Indian culture, peace has always been the way of life. And on this day, United Nations message this year is beautiful and yet very simple, that invest in peace for everyone, everywhere, and every day. Because peace is not merely the absence of war, it is also the presence of safety, dignity, opportunity, dialogue and cooperation.
1: बिल्कुल, और इस शांति को बनाए रखने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, बनाने के लिए बेसिकली, और सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राजनयिक ही नहीं, यूएन आम लोगों को जो अपने समुदायों में सार्थक कदम उठाते हैं, इनको शांति के रोजमर्रा के निर्माता कहता है।
0: That's very right. Of course, there are so many, unsung heroes and heroines that we say that are working in their own small way, yet very impactful way to establish peace. And every time we choose dialogue over hostility, listen before reacting, respect a difference of opinion, or lend a hand to someone in need, we are contributing to a more peaceful society. And in fact, Divya, aajkal again, in the age of social media, India, we have seen that rage has become so much, in people.
1: मतलब इतना संघर्ष है ना अभी कि ये संघर्ष सिर्फ विश्व लेवल पे ही नहीं चल रहा है, ये व्यक्ति के भीतर भी चल रहा है.
0: Absolutely.
1: और हर व्यक्ति परेशान है अपने आप में. Yes. कहीं ना कहीं आप रोड पे जाते होंगे, जरा सी खटपट में लोग तुरंत से मारपीट पे आ जाते हैं, इतने रोड रेज हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं.
0: Yeah.
1: और तो मतलब कहीं ना कहीं ये माहौल कुछ इस तरीके का चल रहा है.
0: Exactly. अभी एंड आई थिंक द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इज दैट हम लोग ने एक दूसरे से बातें करना छोड़ दी हैं. वी आर जस्ट इंटरैक्टिंग ऑन सोशल मीडिया एंड दैट इज नॉट इवन कॉल्ड इंटरैक्शन. हाफ ऑफ द टाइम पीपल हु आर एंगेज्ड, दे आर जस्ट फाइटिंग टू अ फेसलेस एंटिटी के एक कमेंट आता है जिसमें वो उसको गालियां देता है, दूसरा देता है. सो एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट इज बिल्डिंग अप.
1: कहीं ना कहीं ये चेन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बन गया है इसीलिए, क्योंकि हम अब जैसे पहले शुरुआत होती थी दिन की, पहले लोग अपने परिवार के साथ बैठते थे, वहां बहुत सारे गिले शिकवे दूर हो जाते थे.
0: Yes.
1: तो अब वो नहीं है, गिले शिकवे लोग अपने दिलों के अंदर लेकर के घूमते हैं.
0: दैट्स राइट. इन फैक्ट बट एज महात्मा गांधी फेमसली सेड दैट be the change that you wish to see in the world. So instead of lecturing others, at least start practicing that with you yourself. Literally. For example, a simple thing ki agar social media pe kisi ne aapko bura bhala kaha hai to you just don't react, because it's just a virtual media. The person on the other side is just a faceless entity. So it's best not to give any reactions on social media. In fact, there are so many people who are engaged to elicit, the rage. So, aap unko kyun hi feed kare, So, it's best to ignore and don't react.
1: तो शांति की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की शुरुआत की थी और बाद में 21 सितंबर को अहिंसा और युद्ध विराम के दिन के तौर पर तय किया गया. संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पारंपरिक रूप से पीस बेल यानी शांति घंटी बजाई जाती है, जो शांति के लिए मानवता की सार्वभौमिक चाहत का एक सुंदर प्रतीक है.
0: And perhaps no country understands the language of peace quite like India's civilizational heritage. Whether it is the Jain philosophy, principle of Ahimsa, the

0: Buddha's message of compassion or the teachings of Sikhism of equality and brotherhood or Mahatma Gandhi's unwavering commitment to non-violence, India has carried the spirit of peaceful coexistence across generations.
1: Bilkul, kyunki kehte hain na ki mazhab nahi sikhata aapas mein bair rakhna. So, सारे मजहब जो है बात करते हैं शांति की, अहिंसा की, प्रेम की, भाईचारे की, सद्भाव की, और भारत की यही प्राचीन चेतना हमें वसुधैव कुटुंबकम सिखाती है. और ये संसार एक परिवार है, और जब परिवार का कोई सदस्य पीड़ा में हो तो उसकी पीड़ा हमसे अलग कैसे हो सकती है.
0: राइट.
1: आज का दिन युद्ध की विभीषिका को स्मरण करने से आगे बढ़कर शांति की उस दुनिया की कल्पना और उसके निर्माण का संकल्प लेने का दिन है, जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः केवल एक मंत्र ही न बनकर रहे, बल्कि हर इंसान के जीवन की एक तरीके से
0: सच्चाई बन जाए. That's very true. And we come to our second topic, which is very interesting, especially these days. A lot of youth and Gen Zs are probably
1: yes,
0: after
1: definitely.
0: That topic, that why are we so afraid of not having our life figured out?
1: बिल्कुल सायरा, हम लोग जब बचपन में थे तो अक्सर हमसे पूछा जाता था कि बड़े होकर के आप क्या बनना चाहते हैं. और जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमारे सवाल थोड़े से बदल गए कि तुम्हारा करियर प्लान क्या है, अब क्या सोच रहे हो. करियर तय हो गया तो अगला सवाल होता है कि शादी कब कर रहे हो.
0: शादी हो जाती है तो बच्चा कब
1: और जब एक बच्चा हो जाता है कहते हैं अरे दूसरा बच्चा कब आ रहा है.
0: That's right.
1: तो मतलब एक्चुअली सोसाइटी ने कहीं ना कहीं एक ना ढर्रा बनाया हुआ, एक पैटर्न बनाया हुआ. उनको लगता है कि अगर इसी पैटर्न में किसी की लाइफ चल रही है तो वो सही लाइफ है.
0: That's right.
1: उनके अकॉर्डिंग मतलब एक सिविलाइज तभी है जब इंसान की शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, फिर और बच्चे हो जाए, और फिर वो अपने परिवार में सुख से रह रहा है. वो उनके अकॉर्डिंग बेहतर जिंदगी है.
0: एंड अगर लेकिन दोज हु हैव लिव्ड लाइफ, लेट्स आस्क देम, यू नो, डिड दे have life figured out, everybody would say कि भाई life को figure out करने की ज़रूरत क्या है.
1: बिल्कुल नहीं है.
0: You just have to give your best, live to the fullest in each moment you have. Of course, we are not telling you to just be haywire and not have any planning in your head about your careers or whatever. That is of course there, but you don't have to fret over it because there are some things that are just not in our control. और जो चीजें अपने control में ना हो उनके ऊपर energy spend करने से क्या ही फायदा.
1: और frustration आता है बल्कि जब वो मतलब हम पता है क्या अभी हम जो जिस time में चल रहे हैं, हम हर चीज को ना अपने हाथ में रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये कंट्रोल ही हमें कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाता है. कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे लाइफ को किसी सांचे तय सांचे के अनुसार चलना चाहिए. क्योंकि हम नहीं भी चाहेंगे तो हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं उस तरीके से रियलाइज करवा देते हैं कि नहीं नहीं ऐसी ही चलनी चाहिए जिंदगी. लेकिन जिंदगी की खूबसूरती जो है इसमें है कि इसकी कहानी पहले से लिखी हुई नहीं होती है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. एंड इनफैक्ट वन कैन से दैट इनफैक्ट लाइफ इज लेस ऑफ अ सोशल क्लॉक, सोसाइटल क्लॉक, इट्स मोर ऑफ एन एंडलेस चेकलिस्ट. तो वो एंडलेस है, यू नो, आप चेक करते जाइए ओके डन दिस बट यू नो सम न्यू थिंग्स विल स्टार्ट यू नो कीप क्रॉपिंग अप.
1: कि जिंदगी को एक तय समय में पूरा फिगर आउट कर ही लिया जाए या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होना, रास्ता बदलना, खुद को दोबारा डिस्कवर करना भी जिंदगी का हिस्सा है.
0: yes.
1: और खुद को दूसरों की टाइमलाइन से प्लीज कंपेयर करना बंद कीजिए.
0: yeah.
1: और पूरी जिंदगी के जवाब मत ढूंढो, बस जिंदगी को जियो, जिंदगी जीने के लिए है.
0: दैट्स राइट. एंड एवरी स्टेज ऑफ लाइफ देयर सीम्स टू बी अ न्यू माइलस्टोन दैट इज वेटिंग फॉर अस, अनदर एक्सपेक्टेशन टू फुलफिल. दूसरों की नहीं, अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखिए. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माय सेल्फ, यू नो, यू हैव अ सर्टेन गोल दैट ओके नाउ आई विल मेक good healthier choices in life, you know, so that is something that I have to fulfill for myself, not to please others. But again, in that you can say don't fret over it, don't spend too much of your mental energy that you exhaust yourself. And almost by the age of 20-25 it feels like that we are expected to have a degree, a good job, some savings in our bank account, maybe a fulfilling relationship, a marriage plan, of course a 5-year plan for the next 10 years. But come on Divya, you and I both of us are smiling that you know probably we have lived through that and we all know that life always doesn't go as we probably
1: planned.
0: That's true. And especially so, now in fact you know in the age of social media bahut si cheeze pros and cons har cheez ki hote hain, but I do follow a lot of inspirational stories of people and there are so many inspirational people out there who put out their life stories over there.
1: Bilkul.
0: You know, maybe a 50-year-old man and a woman who are thinking that okay, it's just a number and let me just wipe out all the trauma that
1: abhi
0: I had.
1: Main aajkal dekh rahi hu jaise social media

0: खोलते हैं, इंस्टाग्राम स्पेशली खोलते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि कोई अपना कारवां लेकर के निकल गया है पहाड़ों पर, वहां वो चाय बना रहे हैं, और जब लोग जो दूसरे लोग हैं ना, वो जब वो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि काश हम भी ऐसा कर पाते, हम क्यों नहीं कर पा रहे। अब वहां से शुरू होती है तुलना, और जो तुलना होती है, मतलब कोई स्टार्टअप कर रहा है अपना, कोई यूरोप घूम रहा है, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई सोशल सर्विस कर रहा है, तो हम जब मॉर्निंग में ही अपना फोन उठाते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर खुद को लेकर के ना कंपैरिजन आ जाता है कि इतने लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हम कैसे करें, हम क्या करें, और यही जो तुलना है वो कुंठा लेकर आती है इंसान के अंदर, कुंठा से असंतोष आता है, और फिर हम एक लग जाते हैं एक ऐसी दौड़ में जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली है दोस्तों।
1: दैट्स वेरी राइट। इनफैक्ट डोंट प्रेशराइज योर चिल्ड्रन ऑल्सो ओवर मार्क्स, यू वॉन्ट बिलीव दैट, यू नो व्हेन माय डॉटर गोज टू स्कूल, सो यू नो द टीचर वाज कंप्लेनिंग कि इनका वर्क नहीं हुआ या नोटबुक नहीं, देन आई सेड दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ एंड आई एम नॉट अ पेरेंट हु विल पुश माय चाइल्ड टू एक्सेल इन मार्क्स, आई सेंड माय चाइल्ड टू अ स्कूल सो दैट यू नो ही ऑर शी लर्न्स social skills, she has a good time, she interacts with people of her age of different temperaments, तो उसको टैकल करना चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली यू टेल मी, यू एंड आई वी आर सिटिंग हियर, आज तक हम लोग की मार्कशीट सिवाय डेट ऑफ बर्थ के किसी और चीज के लिए काम नहीं आई, नोबडी लुक्स एट द मार्कशीट वेदर वी हैव गॉट 50% और 99%।
0: हमने ऐसे ही किया है, इसके लिए एक है कि हम इक्कीगाई यानी कि जीवन जीने का मकसद, और मकसद हमेशा बदलते रहते हैं, क्यों सायरा, हम जब बचपन में थे तब हमारे मकसद कुछ और थे, आज हमारे मकसद कुछ और होते हैं, और जब हमें कुछ अच्छा लगने लगता है, अब जैसे हमें रेडियो पर बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो हम धीरे धीरे जब बोलते रहे तो इसी से कहीं ना कहीं हम इसमें माहिर होते गए, और आज हमारा ये प्रोफेशन बन गया जिसे हम बहुत ज़्यादा रुचि से करते हैं।
1: दैट्स राइट। And yes, of course, with that we should wrap up.
0: और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपने बहुत देर से शुरुआत की है, तो मान कौर को याद करें, उन्होंने 93 साल की उम्र में एथलेटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया था। हाँ, 93, तो हो सकता है कि आप देर से नहीं हैं, हो सकता है कि आप बस अपने समय पर शुरुआत कर रहे हों। जिंदगी किसी ढरे से नहीं चलती है या फिर समय सीमा से नहीं चलती है, सबकी जिंदगी का समय अलग अलग है, सबकी लाइफ में अलग अलग आता है टाइम। जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है कि जिसमें एक तय उम्र तक सारे जवाब लिख देने हैं।
1: That's right. So stop demanding a lifetime plan from yourself, because perhaps the goal was never to have life completely figured out. Perhaps the goal is to keep figuring it out.
0: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
1: Let's go to Rajasthan first.
0: जी, भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर आज राजस्थान में लोक आस्था के दो प्रमुख केंद्र जैसलमेर और रामदेवरा, और जैसलमेर का रामदेवरा और नागौर का खरनाल श्रद्धालुओं से गुलजार है। प्रदेश भर में लोक देवता बाबा रामदेव जी और वीर तेजाजी महाराज के मेलों की धूम है। जैसलमेर के रामदेवरा में चल रहे 9 दिवसीय वार्षिक मेले का आज अंतिम दिन है। एक रिपोर्ट।

0: लोक देवता बाबा रामदेव को राजस्थान के जनमानस में सामाजिक समरसता और समानता के प्रतीक के रूप में श्रद्धा से पूजा जाता है। रामदेव स्थित उनकी समाधि पर देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाबा रामदेव जी के अनुयायियों में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोग शामिल हैं। उधर नागौर के खरनाल में वीर तेजाजी महाराज की जन्मस्थली पर 2 दिन का वार्षिक मेला कल शाम आरती के साथ शुरू हुआ। मुख्य मेला आज भर रहा है। विभिन्न जिलों और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु खरनाल पहुंच रहे हैं। लोक मान्यता में वीर तेजाजी को शौर्य, वचन पालन और लोक कल्याण के प्रतीक के रूप में श्रद्धा से याद किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को नाग देवता के ढसने के बाद उनका निर्वाण हुआ। इससे पहले कल रात खरनाल में जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने तेजा गायन और भजनों की प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा तथा यातायात के विशेष इंतजाम किए गए हैं। परिक्रमा के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी।
1: बिल्कुल, राजस्थानी कल्चर एकदम भाव विभोर कर देता है, एकदम नाचने पर मजबूर कर देता है सबको। और अब राजस्थान

0: freeing the powerful Junagar state from the grip of its autocratic ruler.
1: आज पुण्यतिथि है राजा सवाई जयसिंह द्वितीय की. वे आमेर के वीर और कुंडितिक राजा थे. जयसिंह ने विभिन्न खगोलीय ग्रंथों का अध्ययन कराया. उन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया और ग्रहों, तारों, सूर्य तथा चंद्रमा की गति के अध्ययन के लिए वेधशालाओं का निर्माण कराया. उनकी वैज्ञानिक रुचि ये साबित करती है कि वे युद्ध और राजनीति तक सीमित शासक नहीं थे. विज्ञान, गणित, विज्ञान को भी राज्य के विकास का हिस्सा मानते थे. जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया है और जयपुर का जंतर मंतर आज भी उनकी वैज्ञानिक सोच और वास्तु प्रतिभा का प्रमाण है. ये केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि भारत की वैज्ञानिक परंपरा का महत्वपूर्ण उदाहरण है.
2: That's
1: आज
2: right.
1: पुण्यतिथि है रामानुज प्रसाद की. वे आकाशवाणी के प्रसिद्ध समाचार वाचक थे. वर्ष 1960 में आकाशवाणी से जुड़े रामानुज प्रसाद सिंह ने लंबे समय तक आकाशवाणी पर समाचार वाचन किया. सुबह, दोपहर और शाम के प्राइम टाइम बुलेटिनों में सालों तक समाचार पढ़ने के कारण रामानुज प्रसाद सिंह आम लोगों में एक जाना पहचाना नाम बन गए थे. वे कवि और साहित्य कुलगुरु रामधारी सिंह दिनकर के अनुज सत्यनारायण जी के बेटे यानी दिनकर जी के भतीजे थे.
2: We are also paying tribute to Noor Jahan, the Malikae Tarannum, and of course, ek daur tha jab singing stars hote se, they used to act also, they used to sing also, and nobody could match Noor Jahan, of course, who had proficiency in Hindustani classical music as well as other genres including ghazals. She is recognized for her contributions to music in the entire South Asia. And I think kisi artist ke baare mein zyada baat karne se achha tha ki kyun na unki art ko hi dekha ya suna jaye. To aaj hamare पास बहुत खूबसूरत सा गाना है इन नूरजहां's वॉइस.

और जब पारिवारिक फिल्मों की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है राजश्री प्रोडक्शंस का, और आज उन्हीं की नींव रखने वाले ताराचंद बड़जात्या की पुण्यतिथि है। और उन्होंने 1960 से लेकर 80 तक के दशक तक कई हिंदी फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने राजश्री प्रोडक्शंस की स्थापना की थी जो आज भी फिल्मों का निर्माण कर रही है। उनके द्वारा निर्मित कुछ उल्लेखनीय फिल्में हैं दोस्ती, जीवन, मृत्यु, उपहार, पिया का घर, सौदागर, अखियों के झरोके से, सावन को आने दो, मैंने प्यार किया नदिया के पार। और आइए सुनते हैं उनकी फिल्म के ये गीत।

और वे सन 2000 से हिंदी सिनेमा में अपनी प्रमुख भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। कपूर को कई पुरस्कार मिले हैं जिनमें 6 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं और 2024 तक वे हिंदी सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं। आइए सुनते हैं उनका ही गाया हुआ ये गीत।

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए दिव्या तोमर और सायरा मुज्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर, साथ ही हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमारे कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी इस सहयोग को और आगे बढ़ाने की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाती है।
2: This strategic partnership.
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
2: Into concrete economic outcome.
1: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। यह समझौता सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर करता है। इसमें भारतीय पेशेवरों और छात्रों के लिए बेहतर मार्ग शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं।
4: Today we have around 1150.
5: देश में अभी करीब 1,150 प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी केंद्र और 773 चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग केंद्र कार्यरत हैं। ये केंद्र सरकारी और निजी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में संचालित हैं। अब इन सुविधाओं का विस्तार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक करने की योजना है, जिससे दवा और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा निगरानी को और मजबूत किया जा सकेगा।
4: Which will make a big change in times to come.
1: दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि ये एक दंडनीय अपराध है। इसमें 3 साल तक का कारावास और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के लोगों से नशा मुक्त पंजाब यात्रा से जुड़ने और राज्य को नशा मुक्त बनाने में योगदान देने की अपील की है। भटिंडा के तलवंडी में यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने पंजाब सरकार पर मादक पदार्थ माफिया के खिलाफ तय समय सीमा में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI ने आज नई दिल्ली में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में SECI की भूमिका हमेशा अग्रणी रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत के माध्यम से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी

मोहब्बत एक ही रंग में कहाँ ठहरती है, कहीं उसमें मिलने का इश्तियाक है, कहीं अनकही बातों की खामोशी, कहीं दिल की शरारत है और कहीं साथ मिल जाने की खुशी। एक ही एहसास और उसके कितने रूप हैं, हर बार एक नई धुन, एक नया रंग। आज गाते गुनगुनाते में उन्हीं रंगों से मुलाकात है, कुछ नर्म, कुछ चंचल, कुछ गहरे और कुछ ऐसे जिनमें प्रेम अपनी पूरी रंगीनी के साथ खिलता है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आज की इस शाम कुछ पुरानी रुमानी और प्यारी धुनों को लिए मैं प्रियांशी भटनागर हूं आपके साथ। तो फिर इस सिलसिले की शुरुआत हो उस साथ की ख्वाहिश से जिसमें सफर भी अपना लगता है और हम सफर भी। जुदाई की रात लंबी हो सकती है मगर इस गीत का यकीन अडिग है, मोहब्बत की मंजिल कहीं दूर नहीं। कयामत से कयामत तक के इस गीत में मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द हैं, आनंद मिलिंद का संगीत और उदित नारायण और अलका याग्निक के सुर हैं।

श्रोताओं, इस कहानी में एक अल्प विराम लेते हैं, फिर लौटेंगे गाते और गुनगुनाते इन्हीं सुरों के साथ। कहीं जाइएगा नहीं, लौटते हैं जल्द ही यही सुनहरी धुनें लेकर। सुनते रहिए FM Gold 100.1 MHz पर।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो।

0: भेजना।
1: इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार।

0: होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयदशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाले भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होंगे। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
2: This strategic partnership,
3: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खुलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेटेड इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि दवाओं के दुष्प्रभावों और प्रतिकूल प्रतिक्रिया की निगरानी में भारत की यात्रा पिछले वर्षों में आत्मनिर्भरता का एक उल्लेखनीय उदाहरण रही है। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय औषध सूची का 7वां संस्करण जारी करते हुए उन्होंने आज ये बात कही। सुश्री पटेल ने बताया कि देश में दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए इस समय 1,100 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं। दूर संचार विभाग ने सिम कार्ड को धोखाधड़ी से जारी किए जाने, पहचान के दुरुपयोग या IMEI नंबरों के साथ छेड़छाड़ से सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि एक दंडनीय अपराध है, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और 50,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने लोगों से अपना सिम कार्ड किसी और के साथ साझा न करने और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिम कार्ड न खरीदने की सलाह दी है। संचार मंत्रालय ने लोगों को संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने मोबाइल का नियमित रूप से सत्यापन करने का परामर्श दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने आज नई दिल्ली में 15वां स्थापना दिवस मनाया। समारोह को संबोधित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने भरोसा जताया कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में निगम की भूमिका सदैव अग्रणी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वे दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई थे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि समाज की सेवा के लिए उनके प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ। निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने 3 पदक जीते। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किए। वहीं इसी प्रतियोगिता की टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: তথা প্ৰয়োগাত্মক কৰ্মশালাখনত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবলীকৰণ আৰু মহিলাসকলক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। এই উদ্দেশ্যে খাদ্য সুৰক্ষাৰ বাবে কৃষিভিত্তিক শাক পাচলিৰ বৈজ্ঞানিক মূল্য সংযোজন আৰু স্বাস্থ্যসন্মত আচাৰ প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰণালী সন্দৰ্ভত মহিলাসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। কৰ্মশালাত ওৰাং অঞ্চলৰ বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোটৰ 30 গৰাকী উদ্যমী মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে। শ্ৰোতাসকলে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰিৰ পৰৱৰ্তী অংশ শুনক জিন্তিৰাণী ডেকাৰ পৰা।
1: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নগাঁও নিৰ্বাচনী জিলাত আসন্ন উপ নিৰ্বাচন সুচাৰুৰূপে আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা জিলা আয়ুক্ত আৰণ্যক শইকীয়াৰ অধ্যক্ষতাত জিলাখনৰ মাণ্ডলিক বিষয়া আৰু খণ্ড বিষয়াসকলৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ বাবে মাণ্ডলিক আৰু খণ্ড বিষয়াসকলে ক্ষেত্ৰ পৰ্যায়ত পাব পৰা নানা ধৰণৰ সুবিধা অসুবিধা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহৰ ভৌগোলিক স্থিতি, যোগাযোগ ব্যৱস্থা, সুৰক্ষা সংক্ৰান্তীয় দিশসমূহৰ বুজ লৈ জিলা আয়ুক্ত বিষয়াসকলক সময়মতে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। এই বৈঠকত তেওঁ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত পৰ্যাপ্ত পোহৰৰ ব্যৱস্থা, সুৰক্ষামূলক সীমা প্ৰাচীৰ, খোৱাপানী, শৌচাগাৰ আৰু পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ বিশেষ আহ্বান জনায়। বৈঠকত অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে জিলাখনৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া উপস্থিত থাকে। বাক্সা জিলাৰ হালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত নৰসিংবাৰীৰ পল্লানৈত গা ধুবলৈ গৈ আজি দুজন কিশোৰৰ সলিল সমাধি ঘটে। আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে নদীখনত জলকেলি কৰিবলৈ অহা 3 বন্ধুৰ 2 থিতাতে মৃত্যু ঘটে। মৃত্যু হোৱা কিশোৰ 2 সৰুপেটা কাহাৰপাৰাৰ মুন দাস আৰু দিগন্ত কলিতা বুলি আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে। স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে মিলি আৰক্ষীয়ে 2 কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে। জাপানৰ আইচি নাগোয়াত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত পুৰুষৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল শ্বুটিঙত ভাৰতৰ হিমাংশু ধিলনে 252.4 পইণ্টেৰে ৰূপৰ পদক আৰু ৰুদ্ৰাংশ পাটিলে 230.9 পইণ্টেৰে ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে হিমাংশু ধিলন, পাৰ্থ মানে আৰু ৰুদ্ৰাংশ পাটিলেৰে গঠিত ভাৰতীয় দলটোৱে 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলছৰ দলীয় শাখাত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰে। ইফালে মিক্সড সমৰকলাৰ মহিলাৰ 60 কিলোগ্ৰাম শাখাৰ ছেমি ফাইনেলত সুচিকা টাৰিৱালে ছিংগাপুৰৰ টিউ হুই হুইনৰ হাতত 0-2 ফলাফলত পৰাজয় বৰণ কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে এছিয়ান গেমছ 2026ৰ মিক্সড সমৰকলাত ব্ৰঞ্জৰ পদক দখল কৰি ইতিহাস ৰচাৰ বাবে সুচিকা টাৰিৱালক অভিনন্দন জনাইছে। কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী ডঃ মনসুখ মাণ্ডাভিয়াই এছিয়ান গেমছৰ 2026ৰ মিক্সড সমৰকলাৰ মহিলাৰ 60 কিলোগ্ৰাম শাখাত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ বাবে সুচিকা টাৰিৱালক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে। ইপিনে এছিয়ান গেমছৰ মহিলা ক্ৰিকেটৰ দ্বিতীয়খন ছেমি ফাইনেলত ভাৰতে বাংলাদেশক 114 ৰাণত পৰাজিত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। ভাৰতে কাইলৈ হ'বলগীয়া ফাইনেলত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। ভাৰতৰ মহিলা বেডমিণ্টন দলেও কাজাখাস্তানক 3-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। আনহাতে ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলে এছিয়ান গেমছত জয়েৰে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। মংগলদৈৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী বিপিন চন্দ্ৰ দাসৰ আজি পুৱা নিজ বাসগৃহত 82 বছৰ বয়সত মৃত্যু হয়। মংগলদৈৰ 3 ৱাৰ্ড নিবাসী প্ৰয়াত দাস মংগলদৈ সনাতন ধৰ্মসভা, ৰাম জানকী মন্দিৰ, 3 ৱাৰ্ড দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতি, মংগলদৈ নগৰ শ্মশান পৰিচালনা সমিতিৰ অন্যতম উদ্যোক্তা হিচাপে সেৱা আগবঢ়াইছিল। সমাজকৰ্মীগৰাকীৰ মৃত্যুত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী, বিধায়ক ডঃ পৰমানন্দ ৰাজবংশী, প্ৰাক্তন বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাস, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বসন্ত দাস আদিকে বিভিন্ন ব্যক্তি আৰু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে শোক প্ৰকাশ কৰে। আজি দুপৰীয়া মংগলদৈ টেঙাবাৰী শ্মশানত তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে ঘাই ঘাই বাতৰিসমূহ পুনৰ এবাৰ। ৰাজ্যজুৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 578 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ তিথি উলহ মালহেৰে পালন। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চন্দ্ৰপুৰত ইছৰোৰ উন্নত ৰাডাৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন। সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে পাছপৰ্ট লাভ কৰা ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক নিৰ্দেশ। আৰু এছিয়ান গেমছৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফলছৰ দলীয় শাখাত ভাৰতৰ ৰূপৰ পদক অৰ্জন।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड को होने वाला भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त होगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
3: This strategic partnership.
4: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्ययोजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
2: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, किसानों, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को बहुत लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 2,00,000 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवरों, छात्र और युवा आवागमन के क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर कृषि मंत्रालय के एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत के अनुसार अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भेरुंदा तहसील के गोदाम से सब्सिडी की राशि जारी करने के बदले 1,00,000 रुपए और बहरा खेड़ी गांव के दूसरे गोदाम से 60,000 रुपए की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि महानदी जल विवाद को बातचीत से शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में है। वर्ष 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के पास लंबित इस मामले को अब केंद्रीय जल आयोग को सौंप दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाई स्पीड और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाजी में आज भारत ने तीन पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं इसी प्रतियोगिता के पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। इससे पहले कल एला विनिल वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में भारत ने कुल 5 पदक अपने नाम किए जिनमें 4 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। वहीं सुचिका तारियाल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सुचिका ने 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया। वहीं कबड्डी में पुरुष टीम ने जापान को और महिला टीम ने बांग्लादेश को पराजित किया। पदक तालिका में भारत 4 रजत, 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 564 अंक की बढ़त के साथ 74,859 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 68 अंक बढ़कर 23,414 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। India and New Zealand Free Trade Agreement, FTA, will come into force from 20th of October this year on the occasion of Vijaya Dashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
3: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost 35,000 crore rupees in the next 4 or 5 years. The entry into force of the India-New Zealand Free Trade Agreement will translate this goal into concrete economic outcomes.
5: Mr. Goyal said this agreement will greatly benefit India's MSMEs, farmers, handicraft and handloom artisans. He said New Zealand have committed to invest 2 lakh crore rupees in India as foreign direct investment under the FTA. Mr. Goyal said India and Canada have also agreed to fast-track negotiations for a comprehensive economic partnership agreement, with the next round of talks set to commence on 5th October. He said the next 90 days could be a defining period in bilateral relations. On the Lindsay O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, Mr. Goyal said, more details of the act are emerging now. He said India will study them and discuss the matter at an appropriate time. The Defence Ministry today signed a contract with Accurate Industrial Controls Private Limited in New Delhi to procure auxiliary power units or APUs for T-72 and T-90 tanks at a cost of 586 crore rupees. The ministry said induction of indigenously developed APUs will further strengthen the operational readiness, reliability and sustainability of the Indian Army's mechanized formations. Minister of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel today said that India's journey in pharmacovigilance has been a remarkable example of self-reliance over the years. She said this while releasing the 7th edition of National Formulary of India in New Delhi. She also said 25 countries in the world recognize and accept the Indian pharmacopoeia, and added that the country now provides pharmacovigilance data to WHO patient safety database. The National Highways Authority of India has released new guidelines for the planning and designing of high-speed access-controlled national highways. The Ministry of Road Transport and Highways said the guidelines seek to bring uniformity in standards for preparation of detailed project reports of high-speed national highway corridors. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the demise of Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum. He was the brother of Dubai's ruler, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. In a social media post, Mr. Modi said that his efforts to serve society will be cherished by generations to come. The Prime Minister also extended condolences to the royal family and the people of Dubai. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar also expressed grief at the demise of Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum. Russia's ruling United Russia Party has taken the lead in the country's parliamentary elections, according to preliminary results released by the Central Election Commission. The party secured about 57.5% of votes, while overall turnout stood at 56.66%. Final results are expected by 25th of September. The election took place amid the ongoing conflict with Ukraine and a major overnight drone attack launched by Kyiv, involving more than 1,900 drones, killing at least 2 people and damaging an oil refinery. The Combined Index of Core Industries, ICI, recorded cumulative growth of 4.8% year-on-year in August. This is slightly less than the downwardly revised growth rate of 5% recorded in July. In Asian Games, India won 3 medals in shooting at Aichi Nagoya in Japan today. In the men's 10-meter air rifle individual event, Himanshu Dhillon won the silver, while Rudraksh Patil secured the bronze. India also bagged a silver in the men's team event of the same competition. In mixed martial arts, Suchika Tarial has become the first athlete from the country to win a medal, securing bronze in the 60-kilogram category. In the medals tally, India is currently in the 12th place with a total of 6 medals, including 4 silver and 2 bronze. And that is the end of this news bulletin.
0: Eya Akashbani Batre hoite moi Prajanma Sohoriya. Etiar pradhan batori homo hol. ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিজয়া দশমী উপলক্ষে অহা 20 অক্টোবৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব। ভাৰত আৰু মংগোলিয়াৰ

अरे भाई तुम जे कि कुआ भाई पैसा रे जानु पृथ्वी सकलो करबो पारी आगे बड़ो काम हो जाओ तार पसत देखा जाबो ओ एता काम किनु तुमालुके

0: এয়া আকাশবাণী তেজপুৰ। খন্তেক পিছতে আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰচাৰিত সমাচাৰ সন্ধিয়া আৰু 9 বজাত News@9 আমাৰ কেন্দ্ৰই ৰিলে কৰি শুনাব।
1: মেচিনত কাপোৰ ৰখাৰ আগতে চেক কৰি চোৱা নাই নেকি?
2: এতিয়াই ওচৰৰ বেংকলৈ গৈ ফটা পুৰণা নোট সলাওক। বেংকে যদিহে
3: নমস্কাৰ, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी का संसद में बहुमत बरकरार। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष 20 अक्टूबर को विजयादशमी पर लागू होगा। नई दिल्ली में आज वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत न्यूजीलैंड के लिए भारतीय निर्यात 100% शुल्क मुक्त रहेगा। उन्होंने कहा कि ये रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा दर्शाती है।
4: This strategic partnership,
5: ये रणनीतिक साझेदारी और वर्ष 2030 तक की कार्य योजना दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक

0: परिणामों में बदलने में सहायता मिलेगी।
1: श्री गोयल ने कहा कि न्यूजीलैंड ने समझौते के अंतर्गत भारत में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये समझौता भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे सेवाओं, निवेश और पेशेवर छात्र और युवा आवागमन के लिए क्षेत्र में भी नए अवसर सृजित होंगे और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
2: It is an important moment for our businesses.
3: हमारे व्यवसायों, किसानों, निर्यातकों और MSMEs, पेशेवर तथा उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इन सभी को इस समझौते के अंतर्गत की गई प्रतिबद्धताओं से लाभ मिलेगा। ये समझौता न्यूजीलैंड से भारत में अगले 15 वर्षों के दौरान 191,000 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके अलावा कृषि उत्पादकता साझेदारी की स्थापना करता है, जिसके अंतर्गत न्यूजीलैंड की तकनीक को भारत के बड़े पैमाने और बढ़ती मांग के साथ जोड़ा जाएगा।
2: मीट इंडिया स्केल एंड ग्रोइंग डिमांड।
1: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति व्यक्त की है। वार्ता का अगला दौर 5 अक्टूबर से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 90 दिन दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि चौथे दौर की बातचीत पिछले सप्ताह मुंबई में हुई थी। अमरीका के भारी भरकम शुल्क लगाने वाले कानून पर श्री गोयल ने कहा कि भारत इसका अध्ययन करेगा और उचित समय पर इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार वर्ष 2026 में करीब 64 अरब डॉलर से बढ़कर 2035 तक 200 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की सेमीकॉन इंडिया 2.0 शीर्षक वाली रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। ये रिपोर्ट सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान जारी की गई। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया।
4: सहायक विद्युत इकाइयां APU, टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम, फायरिंग सर्किट, गन स्टेबिलाइजेशन सिस्टम और अन्य सहायक उपकरणों के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन का एक वैकल्पिक स्रोत है। स्वदेशी रूप से विकसित APU को शामिल करने से भारतीय सेना की मशीनीकृत इकाइयों की संचालन तत्परता, विश्वसनीयता, स्थायित्व और अधिक मजबूत होगी। यह खरीद बख्तरबंद प्लेटफॉर्मों के महत्वपूर्ण उपप्रणाली के स्वदेशीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उद्योग के नेतृत्व में किए गए अनुसंधान और विकास को दर्शाती है। यह अनुबंध सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय रक्षा उद्योग के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तीव्र गति और नियंत्रित प्रवेश वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की योजना और डिजाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये दिशा निर्देश सभी आगामी 4 और 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होंगे। इनका उद्देश्य इन राजमार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में एक रूपता लाना है। इससे तकनीकी मानकों में समानता, सड़क सुरक्षा और परिचालन दक्षता मजबूत करने में सहायता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मेरठ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बूथ, शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर तक संगठन की तैयारियों की समीक्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर आए श्री नवीन ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। समीक्षा बैठक में संगठन की स्थिति, आगामी चुनाव की तैयारियों और जमीनी स्तर से मिलने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, शहर आधारित वैज्ञानिक समूह विकसित करने और देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। डॉक्टर सिंह ने नई और प्रभावशाली वैज्ञानिक उपलब्धियों की लगातार पहचान करने और उन्हें सामने लाने पर भी बल दिया, ताकि

0: प्रयोगशालाओं और संस्थाओं में हो रहे महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल शाम एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी।
1: लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्व के सबसे बड़े स्टैचू के लिए मशहूर गुजरात के एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है। कल मंगलवार को राष्ट्रपति एकता नगर में आयोजित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने के लिए एकता नगर पहुंच चुके हैं। एकता नगर में पुरस्कार समारोह के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 सितंबर को अपने दौरे के अंतिम चरण में वडोदरा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में एक मार्केटिंग अधिकारी को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। गोदामों से जुड़ी रिश्वत की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा गया है।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कई देशों में सेवाओं को नियंत्रित करने, लेन देन करने और वितरित करने के तरीकों को नया रूप दे रही है। इस परिवर्तन में भारत डिजिटल प्रणालियों के एक बड़े उपयोगकर्ता से एक बड़े पैमाने पर डिजिटल के निर्माता के रूप में आगे बढ़ रहा है। भारत ने साझा डिजिटल बुनियादी ढांचे की 3 परतों का निर्माण किया है। पहला आधार है, जो एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करता है। UPI भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिना किसी शुल्क के किसी भी 2 बैंक खातों के बीच तुरंत पैसे स्थानांतरित करता है। खाता एग्रीगेटर ढांचा एक नागरिक को सहमति के साथ ऋणदाता या बीमाकर्ता के साथ अपना वित्तीय रिकॉर्ड साझा करने देता है। इस महीने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की उल्लेखनीय 10 साल की यात्रा और उसकी बढ़ती वैश्विक पहुंच को रेखांकित किया।
3: 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था, लेकिन आज वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। अकेले अगस्त महीने में ही UPI से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। और साथियों, UPI अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, भारत का UPI अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
2: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर निवासी दिव्य प्रताप सिंह ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि पहले लेन देन करने के लिए कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पैसा बड़े पैमाने पर UPI के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।
4: इसने हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पे एक मूल चूल परिवर्तन लाया है और आपसी लेन देन को बहुत ही सुलभ कर दिया है। जो गरीब व्यक्ति था वो आज बैंक से जुड़ गया है UPI के जरिए, तो एक तरीके का आर्थिक हमें जुड़ाव भी देखने को मिला है पूरे देश भर पे। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो UPI ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस देश को परिवर्तन करने के लिए।
2: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के साथ भारत की यात्रा डिजिटल युग में विकास और शासन की कल्पना करने के तरीके में एक व्यापक बदलाव को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन और पहचान की पहुंच का विस्तार करने के प्रयास के रूप में जो शुरू हुआ वो एक व्यापक अंतर संचालित संरचना में परिपक्व हो गया है, जो आर्थिक गतिविधि, सार्वजनिक सेवा वितरण और संस्थागत क्षमता को रेखांकित करता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज आकाशवाणी लेह में केंद्र के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कार्यक्रम निर्माण, समाचार संकलन और समाचार निर्माण, श्रोता संपर्क, विषय वस्तु की गुणवत्ता और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सार्वजनिक सेवा प्रसारण की भूमिका पर चर्चा की। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 8वां संस्करण जारी है। इसमें गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत से जुड़े कई स्मृति चिन्ह शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@airnews हिंदी

0: को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी ने संसद के निचले सदन ड्यूमा के चुनाव में 57.83% वोट हासिल कर बहुमत फिर प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखने में सहायता करेंगे। निर्वाचन आयोग की अध्यक्ष एला पाम फिलोवा ने कहा कि 95.18% मतों की गिनती के बाद यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.83% वोटों के साथ सबसे आगे है। दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के भाई शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम का आज निधन हो गया। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने सोशल मीडिया पर एक संदेश साझा करते हुए अपने भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने शेख अहमद बिन राशिद अल मक्तूम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में आज 3 और पदक जीत लिए। 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में हिमांशु ढिल्लो ने रजत और रुद्रांश पाटिल ने कांस्य पदक जीता। वहीं इसी प्रतियोगिता की पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने आज बांग्लादेश को 3 मैचों में हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में कल भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर सुचिका तारियाल मिक्स मार्शल आर्ट्स में देश के लिए पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पदक तालिका में भारत 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर को लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, समझौते से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और किसानों को लाभ मिलेगा। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया तेज करने पर सहमति जताई। रक्षा मंत्रालय ने T-72 और T-90 टैंकों के लिए स्वदेशी सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए पुणे की एक निजी कंपनी के साथ 586 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नए दिशा निर्देश जारी। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. India-New Zealand Free Trade Agreement to come into force from 20th of next month. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says it will open new employment opportunities in MSMEs and benefit farmers. India and Canada agree to fast-track negotiations for Comprehensive Economic Partnership Agreement. Next round of talks to begin on 5th of next month. Defence Ministry signs contract worth 586 crore rupees with a Pune-based private company to procure auxiliary power units for T-72 and T-90 tanks. NHAI releases new guidelines to boost road safety and efficiency across national highways. Vladimir Putin's United Russia Party retains majority in parliament. And at Asian Games in Japan, India wins 3 medals in shooting at Aichi Nagoya. Badminton men's team reaches quarterfinals, beating Bangladesh. And now the news in detail. India and New Zealand Free Trade Agreement FTA will come into force from the 20th of October this year on the occasion of Vijayadashmi. Addressing a press conference in New Delhi today, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said the agreement will provide duty-free access for 100% of Indian exports to New Zealand.
3: This strategic partnership and the roadmap to 2030 reflects our shared ambition to deepen this cooperation and includes the aspirational goal of doubling bilateral trade in goods and services to almost